आज फिर जीने की तमन्ना है, ये लाइन आज के दिन कोई नहीं गाता, लेकिन आज फिर मरने का इरादा है, ये लाइन सब गाते हैं आज के दिन। तो बताओ दिन कौन सा हुआ। यू आर राइट, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ मिर्ची इंस्टा प्यार ऑन अ मंडे। लेकिन आपके मरने के इरादे को कन्वर्ट करने के लिए आई हैव सो मच लाइंड अप फॉर यू डार्लिंग कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो अपने मरने के प्लान को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो, वो ऑफिस की वजह से हो या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की वजह से हो। आई विल गिव यू 3 गुड रीजंस टू नॉट किल योरसेल्फ टुडे। उनमें से एक ये है कि अगर आपने मेरे साथ लव गेम खेली तो आपको हो सकता है मिल जाए ढेरों किसेस, जस्ट दैट शुड बी रीजन इनफ, नहीं? और आज मंडे की शाम को मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी जिंदगी में कभी भी कोई भी ऐसा लव अफेयर हुआ है जिसके बारे में सोच के आप अपनी नस काटना पोस्टपोन कर देते हो? अगर हाँ, देन हिट मी अप विद योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड व्हाइल यू फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

मेरा चले तो ले ले पूरा दिन, हो तैयार तो घंटे न गिन, मैं हूँ यही एच सर्विस, टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट, हाथ मेरा थाम, लेट मी मेक यू स्माइल, आई लाइक योर स्वैग, यू लाइक माय स्टाइल, देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ, जब भी होती लो तो मेरा नंबर करे डाल, मैं हूँ तेरे साथ साथ तू है मेरे संग संग, तेरे साथ टाइम की खबर न लगे, किसी भी चीज में कसर न लगे, मांगू दुआ यही नजर न लगे, बेबी ऐसे है मत हमें क्या मत, तू मुझको मिली है, ये है मेरी किस्मत।

रेडियो मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट।

0: जब आपका बॉयफ्रेंड सडनली आपको अपनी बहन बनाना चाहता है, then what kind of a situation is that, right? Well, you must have guessed ki time ho gaya hai for
1: the secret box.
0: Aur yahan par legit everything goes. Lekin ye pehli baar hai that the insan who's my caller doesn't want to be known as a mystery caller. Usne kaha ki Roshi, main apne naam se janna chahti hu because logo ko bhi pata chale ki aisa bhi hota hai duniya mein. So I have with me Anjali. Aur agar aapke paas bhi hai koi secret confession, mere paas hai usse sunne ke liye. Non-judgmental Khan. Anjali, meri jaan, how are you?
2: Hi, Roshi.
0: How are you?
2: I am fine. How are you?
0: I am very good. And in that happiness and excitement, I am ready to hear your confession. So, kya hai aapka confession, which is not so secret?
2: जैसे कि सब relationship में होते हैं, वैसे था ये relationship. अब हो गया हमारा breakup. तो फिर एक साल बाद, just एक साल बाद, उसका randomly call आता है मेरी मम्मी के पास. और आता है, हेलो मम्मी जी, जय श्री कृष्णा. उसका ऐसा कुछ वर्ड है. तो बोले कि मेरी एंगेजमेंट हो रही है और मैरिज हो रही है, तो फिर मैं आपको बुलाना चाहता हूँ. अंजलि मेरी बहन है, उसको भी मैं बुलाना चाहता हूँ. और मेरा रिएक्शन वाज लाइक ओह माय गॉड, ये क्या बोल रहा है. फिर बाद में फोन आ गया कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ एंड ऑल, क्योंकि अपन भाई बहन बन जाते हैं.
0: ये क्या होता है, ये कैसे, ये मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना है. ठीक है, मतलब मैंने इतने सारे कन्फेशन सुने, इतनी सारी स्टोरी सुनी है ऐसी.
2: ओके, अब देखते हैं अब क्या होता है. उनसे बोला वो अब अपन राखी भी सेलिब्रेट करेंगे अपना.
0: देखो बुरा नहीं लग रहा है,
2: भाई बहन है यहाँ तक ठीक है. अब तुमने वो सब कुछ कर रखा है, इसके बाद तुम भाई बहन हो जा दो.
0: लाइक ये क्या बंदा है यार, क्या डेट करी थी तू, ये कौन से चिंपैंजी को डेट करी थी.
2: बोले कि अपने घर वाले नहीं मानेंगे, इससे अच्छा अपन भाई बहन बन जाते, भाई बहन मान जाएंगे.
0: पता है, ऑनेस्टली आई विश वो यहाँ पे होता, मैं उसे रोशिफाई कर देती, बिकॉज मोर देन यू ही नीड्स अ रोशिफिकेशन सीरियसली. बट उसके बिहाफ पे तेको रोशिफाई कर दूं.
3: यू've been रोशिफाइड.
0: देव, तेरी स्टोरी ना, तेरा कन्फेशन इज सो कमाल, इट्स सो कमाल, आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू. मतलब मेरा बस चले तो मैं तुझे 101 किसेस एंड हग्स भी दे दूं. बट यू आर ओके राइट, तेको बुरा तो नहीं लग रहा ना.
2: नहीं नहीं नहीं नहीं. देन इट्स ऑल
0: Dude, this is hilarious. It was really nice talking to you. I'm sending you big, big love, ठीक है?
2: हाँ.
0: शादी की फोटोज भेजना मुझे उसके, ठीक है? Okay, babe, bye. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसा ही कोई कन्फेशन है, दिस इज हिलेरियस एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली दैट आई हैव नॉट अ मिस्ट्री कॉलर. अंजलि वांटेड टू बी नोन बाय हर नेम. हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफबी एंड आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mitchie, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: कभी कभी इन चार्ट्स को एक सिंपल काउंटडाउन की तरह सुनना थोड़ा अनफेयर लगता है, बिकॉज एवरी सॉन्ग ऑन दिस लिस्ट इज एक्चुअली अ टाइम मशीन। एक गाना आपको इस हफ्ते के बॉलीवुड में ले जाता है और अगला ही गाना बिना वार्निंग के 10 साल पीछे। कभी कोई पुरानी आवाज अचानक वापस आ जाती है, कभी एक नया सिंगर किसी पुराने एहसास को अपनी नई सांस दे देता है, और कभी एक ऐसा गाना जिसे हमने सोचा था कि हम भूल चुके हैं, पता चलता है वो तो बस दिल के किसी कोने में सो रहा था। शायद इसलिए बॉलीवुड को सिर्फ न्यू और ओल्ड में बांटना मुश्किल है। यहाँ पास्ट भी हर वीक नए सिरे से रिलीज होता है और फ्यूचर भी कभी किसी पुराने गाने की शक्ल में लौट आता है। और आज के मिर्ची टॉप 20 में वक्त थोड़ा ज्यादा ही उलझा हुआ है। कुछ आवाजें वापस आई हैं, कुछ पुराने रिश्ते वापस आए हैं, और कुछ गाने अपनी जगह से कई बड़े हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते बॉलीवुड हमें किस जमाने में लेके जा रहा है। इट्स मी सुरेन, दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी आर स्टार्टिंग विद द गाना व्हिच इज ऑन नंबर 20, धुरंधर का आरी आरी।
0: नंबर 20।

0: सुपरस्टार होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? ऑडियंस जब आपकी एक इमेज बना लेती है तो उस इमेज के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। अक्षय कुमार ने अपने 35 साल के करियर में ये रिस्क बार बार लिया है। पहले एक्शन हीरो, देन रोमांटिक लीड, फिर कॉमेडी स्टार, उसके बाद पेट्रियोटिक फेस। उन्होंने खुद एक बार बताया था कि करियर के एक दौर में जब वो हर फिल्म में सिर्फ डिशुम कर रहे थे, तो एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें एक अजीब सा डर लगा था।
1: एक दिन महसूस हुआ यार कि मैं सिर्फ एक बोरियत से आने लगी, और क्या मैं इसी के लिए बनाऊं कि सिर्फ एक्शन ही करना है, मैंने और कुछ नहीं करना, मैं और भी कुछ कर सकता हूं। महसूस हुआ अपने अंदर ये घिन आने लगी यार कि मैं कुछ और भी तो कर सकता हूं। बाकी सब एक्टरों को एक्टर बुलाते हैं, मुझे एक्शन बुलाते हैं, बस एक्शन का किंग कर लो, ये कर लो, इसको बुला लो, इसको स्टंट करवा लो, स्टंट मैन है मैं, यार करूंगा। आई थॉट इन माई माइंड आई हैव टू नाउ Change myself. I have to take a risk.
0: अक्षय ने अपने चेहरे में एक इमेज की जेल को देखा। आज हैवान में अक्षय कुमार एक डार्क सीरियल किलर के रूप में उस इमेज से एक बार फिर भाग रहे हैं। और इसी डार्क वर्ल्ड के बीच प्रीतम नाय ने एक बहुत ही मेलोडिक कॉन्ट्रास्ट दिया है शान और सुखविंदर सिंह की आवाज में। मूवी में सैफ अली खान पर पिक्चराइज ये गाना एक पुराने दौर के सुकून को लौटा कर लाता है। नंबर 18 पर डेब्यूइंग दिस वीक, दिस इज रंगियारा फ्रॉम हैवान। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 15

पिया बॉलीवुड का सबसे फेवरेट रोमांटिक वर्ड, लेकिन कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी डेली लाइफ में हम इस वर्ड को बिल्कुल नहीं यूज करते। रियल लाइफ में अगर आप किसी को पिया बोल दोगे ना तो वो शायद शर्मा जाए या फिर आप पर शक करने लगे, लेकिन हिंदी सिनेमा ने पिया को कभी रिटायर नहीं होने दिया। 90s में फाल्गुनी पाठक ने इसे पॉप कल्चर का रिदम बना दिया था। Then 2000s में राहत फतेह अली खान ने इसे सूफी पोएट्री का रूप दे दिया।

बॉयफ्रेंड वर्ड प्रैक्टिकल है, पार्टनर वर्ड कॉर्पोरेट लगता है और लव वर्ड थोड़ा रिस्की है, लेकिन पिया में रोमांस के साथ एक अलग ही पोएट्री है। और आज इतने सालों बाद प्यार को शायद नाम से ज्यादा एक सवाल की जरूरत है, जब दिल चाहता है कि सामने वाला बिना कहे सब समझ जाए। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया की एक फिल्म आ रही है वन, लेकिन इसमें एक ऐसा गाना है विच ब्रिंग्स बैक द कोलैबोरेशन ऑफ सिद्धार्थ एंड जुबिन नौटियाल दैट गिव अस राता लंबिया इन शेरशाह एंड तुम ही आना इन मरजावा। इस बार दे ब्रिंगिंग अस अ गाना जहां फोकलोर और जज्बात मिलते हैं। नंबर 14 पर डेब्यू कर रहा है समझो ना फ्रॉम वन। नंबर 14।

प्रवीण के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। Surin ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 4.

0: इतने हफ्तों से गहरा हुआ का नंबर 3 पर बने रहना इस बात का प्रमाण है कि धुरंधर ने रणवीर सिंह के करियर को दो हिस्सों में बांट दिया है, बिफोर धुरंधर एंड आफ्टर धुरंधर। और रणवीर की इस जर्नी को देखकर मुझे 2011 का रणबीर कपूर याद आता है। रॉकस्टार से पहले रणबीर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग स्टार थे, लेकिन इम्तियाज अली की उस फिल्म ने रणबीर के अंदर की सारी बेड़ियां तोड़ दी। नाउ मजेदार बात यह है कि इम्तियाज अली ने जब रॉकस्टार लिखी थी, ओरिजिनली उनके दिमाग में रणबीर थे ही नहीं।
1: रणबीर कपूर को फिल्म में लेने का कोई सवाल नहीं उठता था जब मैंने रॉकस्टार लिखी थी। पहले मैं जॉन इब्राहिम के साथ वो फिल्म बनाने वाला था। एक्चुअली जब मैंने मूवी लिखी, रणबीर कपूर एक्टिंग नहीं कर रहे थे। सोचा ना था कि बनने में 4 साल लग गए थे, और उसमें मुझे अपने आप को पागलपन से बचाने के लिए कुछ रेलेवेंट काम करना बहुत जरूरी था। तो इस चक्कर में मैं स्क्रिप्ट्स लिखा करता था। उसमें से एक स्क्रिप्ट थी रॉकस्टार, मेट रणबीर अ कपल ऑफ टाइम्स, फिर हम लोग दोनों ने फैसला किया कि हम कुछ साथ में बनाएं। उसके बाद फिर मैं उनके घर गया एक कहानी सुनाने के लिए, तो उसने कहा कि अच्छा आपकी मैंने एक कहानी सुनी है, तो उस कहानी में एक रॉकस्टार होता है। फिर उसने मुझे नरेट किया, दिस इज अ यूनिक नरेशन वेयर आई वेंट टू मीट एन एक्टर एंड द एक्टर नरेटेड द स्टोरी टू मी।
0: जॉन इब्राहिम से शुरू हुई स्क्रिप्ट जब 24 साल के रणबीर तक पहुंची तो एक डायरेक्टर को अपना जॉर्डन मिल गया। जॉर्डन को हीरो नहीं था वैसे, वो गुस्से वल्नरेबिलिटी और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक तूफान था। रणबीर ने जॉर्डन को एक्टिंग से नहीं अपनी रगों से जिया था। उस दिन के बाद इंडस्ट्री ने रणबीर से पूछना बंद कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, और देखना शुरू कर दिया कि आप कितना दूर जा सकते हो। टुडेस पिक ऑफ द वीक इज द ट्रैक दैट चेंज्ड रणबीर्स डेस्टिनी फॉरएवर फ्रॉम रॉकस्टार। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बाय मोहित चौहान एंड एआर रहमान एंड इरशाद कामिल। इस गाने का नाम है जस्ट लाइक द फिल्म। जो भी मैं कहना चाहूं, पर बात करें अल्फाज मेरे।
2: Pick of the week.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर टू अच्छा

नंबर दो पर चुनरी चुनरी का चढ़ना एक मैडनेस है यार। रिलीज के इतने महीनों बाद भी ये गाना रुकने को तैयार ही नहीं है। लेकिन नंबर वन पर जो गाना बैठा हुआ है काफी कंफर्टेबली, उसके साथ मेरा एक बहुत पर्सनल कनेक्शन है। मैं कोई क्लासिकल म्यूजिशियन नहीं हूँ, मुझे म्यूजिक की टेक्निकलिटी समझ नहीं आती है, कंपोजिशन के अंदर क्या क्या जाता है आई डोंट नो। लेकिन हाल ही में मैंने तेरा मेरा रिश्ता का एक अलग ही वर्जन सुन लिया, एक सूफी कव्वाली वर्जन, नियाजी निजामी भाइयों की आवाज में।

0: फिल्म का ओरिजिनल वर्जन एक अकेले टूटे हुए आदमी की खामोश दुआ है, जैसे रात के सन्नाटे में कोई खुदा से अकेले में कुछ पूछ रहा हो। लेकिन कव्वाली वर्जन में वही दर्द एक महफिल का हिस्सा बन जाता है। हारमोनियम की गहरी सुरीली पत्ती के ऊपर जब तालियां और कोरस जुड़ता है तो लगता है जैसे एक इंसान की तन्हा पुकार को पूरी महफिल ने अपनी आवाज दे दी हो। सिंगल वॉइस अंदर खींचती है, कव्वाली उस दर्द को बांट लेती है, और शायद यही पहचान होती है ऑफ दीज ग्रेट सॉन्ग्स। सिंगर्स बदल जाए, अरेंजमेंट बदल जाए, जमाना बदल जाए, लेकिन जज्बात वो कभी नहीं बदलते। 19 साल बाद भी ये गाना किसी एक फिल्म का नहीं, हर टूटे और जुड़े दिल का है। Still reigning at number one, this is तेरा मेरा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो है 19 साल पुराना।
1: Number

0: कुछ गाने चार्ट से निकल जाते हैं लेकिन हमारी मेमोरी से कभी नहीं निकलते, इसलिए हम बार बार उनके पास खींचे चले आते हैं, हर बार अपने अंदर का एक नया पन्ना पढ़ने के लिए। अगर इस बार के मिर्ची टॉप 20 में आपको अपनी कोई पुरानी याद, कोई अधूरी बात या कोई नया एहसास मिला हो तो समझ लेना कि हमारा सफर पूरा हो गया है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम आई मीट यू हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, दिस इज सरीन, ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट काउंटडाउन ऑफ द वीक, यानी गाना इंडी टॉप 10, जहां पर हम हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती आपके लिए करते हैं। इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है। काउंटडाउन के साथ साथ हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप क्लासिक आपके लिए लाएंगे। सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके स्टे कनेक्टेड विद मी। कोई गाना रेकमेंड करना है, कोई बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। शुरुआत ही एक नई एंट्री के साथ हो रही है। गाने का नाम है वो आएगा, ऑपरेशन सफेद सागर का है ये गाना। अनुराग साइकिया की कॉम्पोजिशन, राज शेखर के लिरिक्स, राघव चैतन्य की आवाज में वो आएगा डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: कूल इंटरनेट स्लैंग्स आपको संजू राठौड़ के गाने में मिल जाएंगे. भले ही आपको मराठी समझ आए ना आए, बैंगल्स पे यू विल ग्रूव. दैट्स द मैजिक ऑफ संजू एंड हिज प्रोड्यूसर जी स्पार्क. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. दिस वाज बैंगल्स ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. असली कहानियों से गाने बनते हैं, गानों से असली कहानियां इंस्पायर होती हैं. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो ऐसे ही एक कश्मकश में लाके खड़ा कर देता है. एक चिड़िया के बारे में सोचो जो एक पिंजरे में बंद है. वो जब से इस पिंजरे में है, वो चाहती है कि वो इस पिंजरे को तोड़ के बाहर निकल जाए आसमान में, उस आसमान में जहां वो बिलोंग करती है. और उसी आसमान से उसे डर भी लगता है. नाउ अब कंफ्यूज मत हो कि ऐसा कैसे कि वो आसमान में जाना चाहती है लेकिन फिर भी उसे डर लगता है. रियलिटी तब हिट करती है व्हेन वी रियलाइज दैट ये बात तो सिर्फ परिंदे की है ही नहीं, ये तो मेरी आपकी भी बात है. हम सबके अंदर कहीं ना कोई एक अंदर एक छोटी दबी हुई विश है, राइट? एक चुल होगी या कोई आर्टिस्ट है हमारे अंदर छुपा हुआ. कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर एक फिल्म की कहानी है, एक पेंटिंग है, या मे बी आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है. और हमने क्या किया, उन सब विशेष को लेके एक अलमारी के अंदर बंद कर दिया. बोला कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, जिंदगी बना लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, कॉलेज पूरा कर लेते हैं. और वो जो हमारे अंदर की इच्छा थी, वो क्रिएटिव विश, वो रोज करते करते थोड़ी थोड़ी मर गई. नाउ जस्ट इमेजिन एक दिन यूनिवर्स आपकी वो सारी विशेस मान ले. कल सुबह आपको परमिशन मिल गई कि आप जो करना चाहते हो जाएगा. आसमान खुला आपके सामने है, आप क्या करोगे? ये जवाब मुझे मत दो, खुद सोचो कि क्या आप वो कदम ले लोगे या फिर उल्टी होके अलमारी में बैठ जाओगे. क्योंकि जो कंफर्टेबल दुनिया हमने बना ली है, इसकी अब आदत हो गई है. ये सर्कमस्टेंसेस ही बस रियल लगने लगते हैं कि क्या हमें ये पिंजरा इतना अच्छा लगने लग गया कि वो कदम बाहर निकालना कैसे है, अब हमें उससे ही डर लगता है. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो बिल्कुल इसी कश्मकश के बीच में है. लखनऊ के आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का नाम है फरक. उन्होंने ही एक गाना लिखा है, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है. आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पे ये गाना जरूर सुना होगा, लेकिन अब इस मतलब के साथ सुनना. गाने का नाम है तारे. 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप होके तारे बाय फरक इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3
1: मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7

0: मेरी बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन ऊपर जंप मार के बरसात इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना रिकमेंड करना है, बातें करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। कुछ गाने हमें हैप्पी फील कराते हैं, कुछ सैड फील कराते हैं, कुछ ट्रैवल करने की चुल जगा देते हैं, एंड कुछ गाने प्योरली हमको एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप पे लेके चले जाते हैं। एंड अगले वाला गाना इज ऑल अबाउट दैट नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
2: मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है।
0: गाने का नाम है मेरी नींद उड़ गई है, बाय अ बैंड ऑफ बॉयज। साल 2002 में ये गाना आया था उनकी एल्बम ये भी वो भी से। आज सुबह जब मैं शो की तैयारी कर रही थी तो ये गाना सुन रही थी। आई वॉन्ट टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू बिकॉज बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। एंड मेरा एक दोस्त साइड में बैठा हुआ था, वो अपना काम कर रहा था एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। एकदम बीच में उठता है एंड बोलता है कि यार ये गाना सुनते ही ना मेरा एकदम स्ट्रेस चला गया, एनर्जी आ गई मेरे अंदर। एंड आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई, व्हाट मेड यू फील लाइक दिस, एंड ही सेड बस नॉस्टैल्जिक लगा। एंड आई एग्जैक्टली अंडरस्टूड वो क्या कहना चाह रहा था। ये गाना उसको एक सिंपलर टाइम्स में लेके चला गया, 2002 का वो वक्त जब प्यार होना, क्रश होना, किसी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना बहुत ही सिंपल था। कोई सीन नहीं था, कोई ब्लू टिक का प्रेशर नहीं था। ये नहीं था कि यार ये मुझे रिप्लाई तो कर नहीं रहा है या रिप्लाई तो कर नहीं रहा लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रही है। बस किसी का ख्याल है, एक तरफा दिमाग में इमेजिनेशंस चल रही हैं, उतना ही है और वही काफी था। एंड इस गाने में पूरी वही वाली फीलिंग्स हैं, मेरी नींद उड़ गई, मेरा होश खो गया। दैट्स एग्जैक्टली हाउ अ क्रश मेक्स यू फील। एंड अगर आप किसी के क्रश हो देन दिस इज लाइक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। साल 2002 का गाना है बट इट साउंड्स लाइक फ्रेश फ्रॉम द ओवन। वो लेस्ली लुईस की खासियत है, अ बैंड ऑफ बॉयज का गाना। दिस इज मेरी नींद उड़ गई है ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बनी का नाम है कनिका। एंजॉय।

Dude, this song is like a time capsule. I swear it takes me back to those simpler times. Gana Gana Mein Meri Neend Ud Gayi Hai by a band of boys. That was on our cassette classic this week. At RJ Kanak on Instagram par aao. Main aur mera producer Ashkai, hum aapke cassette classic ke recommendations ko bahut seriously lete hain. We might feature your song next week. Now quickly is indie pop quiz ka answer karo. A band of boys ka ek gana hai. मैं पहली लाइन गा रही हूँ, दूसरी लाइन आपको मुझे एट आरजे कनेगा और इंस्टाग्राम पर आके बतानी है क्या है. तेरे नैन कटारी मेरी राम डैश एट आरजे कनेगा पर आके मुझे बताओ. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट्स अटली बटली ब्यूटिफुली रोमांटिक सॉन्ग. राघव कौशिक रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक का म्यूजिक. इट्स फ्रॉम मुसाफिर कैफे. गाने का नाम है दरमिया. पिछले हफ्ते से 5 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद बादशाह हितेन शर्वी यादव का बैंगर इज ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: रोजाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ
0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट। गाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ
0: ऑन मिर्ची
2: हाउ चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, उन्हीं के कंपोजिशन, गाने का नाम है साड़ी सुन। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर स्टे कनेक्टेड विद मी। दिस इज द शो जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। यू नो, एक टाइम था जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक को पसंद करना मतलब इंडी पॉप बैंड्स के फैन थे। बहुत सिंपल थी ये बात। एक बैंड कल्चर था जो इस अल्टरनेटिव म्यूजिक का पिलर था। फ्रॉम यूफोरिया टू सिल्क रूट टू इंडियन ओशन, लेट 80s एंड अर्ली 90s में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ने हमें बहुत सारे बैंड्स दिए। एंड दीज बैंड्स हैव बीन इंस्पिरेशन टू सो मेनी म्यूजिशियंस। कॉलेज में, स्कूल में अगर आपके अंदर एक आर्टिस्ट था, एक म्यूजिशियन था, तो आपको अपने दोस्तों के साथ बस एक बैंड शुरू करना था। एंड आज कंटेम्प्रेरी स्पेस में वी हैव गॉट येलो डायरीज, लोकल ट्रेन एक बैंड था व्हिच वाज सो पॉपुलर, कॉलेज फेस्ट फेवरेट थे वो लोग। इन्हीं सारे बैंड्स के बीच में एक और बैंड है जो मे बी आप उनका म्यूजिक मिस कर चुके हो, पर जब आप उनके गाने सुनोगे दे विल बी ऑन योर मैप। बैंड का नाम है लास्ट मिनट इंडिया और ये फोक रॉक म्यूजिक बनाते हैं। ये एक्चुअली कॉलेज में साथ थे, दोस्त हैं जिन्होंने साथ में बैंड बनाया। एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन में रजिस्टर करने जा रहे थे एंड इनके पास अपने बैंड का कोई नाम ही नहीं था, बट दे हैड टू रजिस्टर एंड इट वाज लास्ट मिनट। उन्होंने सोचा कि क्या नाम रखें इतने लास्ट मिनट में, एंड यस दैट्स हाउ दे स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्फ्स लास्ट मिनट इंडिया। एंड ये किसी ओवरनाइट रील से या एक वायरल गाने से पॉपुलर नहीं हुए। कॉलेज टू कॉलेज, लाइव परफॉर्मेंस टू लाइव परफॉर्मेंस, धीरे धीरे कॉम्पिटिशन जीत कर हर शो से अपनी ऑडियंस को बनाकर मुंबई के ये 5 लड़के आज भी फोक रॉक में म्यूजिक बना रहे हैं। They've got a new song जिसका नाम है उड़ चले। I'm going to play this song for you, but the best thing about this song is that अगर आप इसकी वीडियोस देखने लगोगे आपको रियलाइज होगा कि इतने सारे कॉलेज शोज में लास्ट मिनट इंडिया ने इस गाने को टीज किया था एंड अब ये गाना ऑफिशियली रिलीज हो गया है एंड इंटरनेट पे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, यार ये गाना हमने लाइव सुना था। इट्स दैट परफेक्ट पॉप रॉक सॉन्ग जिसमें मेलेडी भी है, म्यूजिक भी है, इमोशन भी है एंड देयर इज अग्रेशन एज वेल। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। दिस इज उड़ चले बाय लास्ट मिनट इंडिया, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: That was Ur Chale by Last Minute India on our Gaana Spotlight of the Week at RJ Kanika Instagram पर आओ and quickly इस indie pop quiz का answer करो. Palash Sen, a very popular independent musician, वो किस independent band का part है? उनके band का नाम आके मुझे बताओ. Palash Sen के band का नाम क्या है? At RJ Kanika on Instagram पर जल्दी जल्दी आके बताओ. Back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना 24 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है बैरन. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची पर. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर. मेरा हैंडल इज @RJKanika. दिस इज द शो विच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स, कुछ ऐसे भी गाने होते हैं विच डिजर्व अ स्पेशल शाउट आउट. ऐसे ही गाने के बारे में बात करने वाली हूँ. इट्स कॉल्ड गाने का नाम है बूम शाकलाका. एंड आई एम श्योर ये गाना, ये फ्रेज आपने जरूर सुना है. गाने के फॉर्म में नहीं सुना है तो किसी को बोलते हुए सुना होगा, बिकॉज इट्स एवरीवेयर. ढांडा न्योली वाला एंड कृष्णा का ये गाना है. वैसे तो ये गाना अप्रैल में रिलीज हुआ था, पर धीरे धीरे धीरे कृष्णा के फैंस एंड ढांडा न्योली वाला के फैंस के ऊपर निकल चुका है ये गाना. हिप हॉप के आगे बढ़ चुका है एंड एक तरह के पॉप कल्चर का पार्ट बन गया है. छोटे बच्चे इस गाने को गा रहे हैं, कॉलेज वाले इस पे रील्स बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई इंसान अभी गाड़ी चला रहा है जिसको हिप हॉप के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और वो भी बूम शाकलाका गा रहा है. एंड दैट्स व्हेन यू नो दैट दिस सॉन्ग इज बिगर देन द आर्टिस्ट. कृष्णा को हिप हॉप सीन का एक सबसे टेक्निकल लिरिसिस्ट बोला जाता है, एंड इस गाने में भी वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं. द वर्ड प्ले ऑफ द सॉन्ग इज द रीजन दैट यू कीप कमिंग बैक टू इट. बट द हीरो ऑफ दिस सॉन्ग फॉर मी इज ढांडा न्योली वाला. उन्होंने हरियाणवी म्यूजिक रैप को कूल बनाया. उनका असली नाम परवीन ढांडा है एंड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक आर्टिस्ट ऑफ दिस सीन. हरियाणवी में अपने गाने लिखते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, पर पढ़ते सारी शायरी जॉन एलिया जैसी है. ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट एंड हम उनके बारे में और बात करेंगे. पर अभी अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. इस गाने को मैं जब भी प्ले करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को बस एक पॉइंट प्रूफ कर रही हूँ दैट बूम शाकलाका. इट्स लाइक आई हैव गॉट द लास्ट वर्ड ऑन दिस. ढांडा न्योली वाला कृष्णा का गाना. दिस इज बूम शाकलाका. अ स्पेशल शाउट आउट ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है RJ कनिका. एंजॉय.

This song is a perfect concoction of Krishna, Dhanda Nyoliwala, Haryanvi rap and all that combined into this attitude package. Such an addictive hook that boom shakalaka. Agar aapne aaj pehli baar hamare show ke zariye suna hai, to I'm sure ki aap agle do din tak ye line bolte hi rahenge. At RJ Kanek on Instagram par aao, mujhe batao aise kaun se gaane hain jo aap kabhi social media par ya kisi trend mein sunte ho and then wo bas dimag mein atak jate hain. Back on the countdown, agle dono gaane वही गाने हैं जो जनता को इतने पसंद आए दैट टॉप टू तक आ गए हैं. अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी, 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करा है उड़ी उड़ी. दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रौर का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज फीचरिंग स्वरा वर्मा, गाने का नाम है शीशा, 24 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक, उड़ी उड़ी ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनेका, एंजॉय. नंबर 2.

0: Itchy. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

0: Mirchi, it's hot.
1: Dinner,

मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। जो अगर तुम्हारा अलार्म 5 बार बज चुका है तो मैं अपना काम कर रही हूँ विद फुल एटीट्यूड ऑफ मिर्ची। कांग्रेचुलेशंस, यू हैव स्नूज्ड 5 बार का अलार्म एंड यू स्टिल मैनेज टू जॉइन मी इन मिर्ची मॉर्निंग्स। लेकिन अब जाग ही गए हो तो मूड भी ऑन कर देते हैं। ये वो जगह है जहां पर तुम्हारी चाय इमेजिनरी हो सकती है लेकिन चाय की मिर्ची इमेजिनरी नहीं हो सकती है। अभी फिलहाल तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मॉर्निंग कम्यूट कर रहे हो, कॉफी ब्रेक ले रहे हो या फिर वो बस 5 और मिनट बेड में सोने वाले नाटक कर रहे हो, चाहे यू ड्राइविंग टू वर्क, पैकिंग योर लंच या फिर प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है, आई सी यू एंड आई एम एग्जैक्टली लाइक यू। सो बकल अप बिकॉज यहां पर मिलने वाला है तुम्हें ढेर सारा बॉलीवुड मस्ती, म्यूजिक, थोड़ा सा मसाला, ढेर सारी मिर्ची, अराउंड द वर्ल्ड की खबरें और वो वही फेमिलियर देसी वाली फीलिंग की ये तो बिल्कुल मेरे घर जैसी है। और वो मैं हूँ, मैं बोले तो प्रिसला। मुझे जल्दी से जाकर फॉलो कर लो इंस्टा और एक्स पे, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ था, चलो पता करते हैं। टाइम मशीन में बैठ जाओ, 1776 में चलते हैं। ब्रिटिश फोर्सेस अंडर जनरल विलियम हाउी ऑक्यूपाइड मैनहट्टन ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन। मतलब कि मैनहट्टन का रियल एस्टेट ड्रामा काफी पुराना है गाइस। 1835 में नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन रीच द गैलापागोस आइलैंड्स अबाउट द HMS बीगल, और यहीं से उनकी ऑब्जर्वेशन ने एवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग को शेप देना शुरू कर दिया था। 1916 के वर्ल्ड वॉर वन के बैटल ऑफ द सोम में टैंक्स वर यूज्ड इन कॉम्बैट फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड 1935 में नाजी जर्मनी अडॉप्टेड द स्वास्तिका एज इट्स नेशनल फ्लैग एंड एनएक्टेड द डिस्क्रिमिनेटरी नूरेमबर्ग लॉज, अ डार्क चैप्टर दैट लेड टू हॉरिफिक पर्सिक्यूशन एंड जेनोसाइड। 1950 में यूएन फोर्सेस सक्सेसफुली लैंडेड एट इंकॉन ड्यूरिंग द कोरियन वॉर। 1963 में ट्रेजेडी स्ट्रक बर्मिंगहम अलबामा व्हेन अ केकेके बॉम्ब एक्सप्लोडेड एट द 16th स्ट्रीट Baptist Church, killing 4 young black girls. The horrific attack intensified the American civil rights movement and became a painful symbol for the fight against racism. And finally, 2008 aaya, Lehman Brothers filed for Chapter 11 bankruptcy, the greatest US bankruptcy filing at that time. Aur aaj India mein manaya jata hai National Engineers Day to honor the legendary engineer and Bharat Ratna recipient Sir Moksha Gundam Visveswaraya. So yeah, that was September the 15th. Bahut kuch dekha इस दिन ने, और अब आगे क्या देखने वाला है 2026 में। मिर्ची दर मांगे जाने वाले तुम्हारे लिए ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और चलो चेक करते हैं मिलकर कि आज मदर नेचर का मूड कैसा है। ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी फिलहाल टेम्परेचर है 54 डिग्री फारेनहाइट, स्काई काफी क्लियर है, लेकिन हवा जो है थोड़ी सी नखरीली है। इट्स मेकिंग इट फील मोर लाइक 50 डिग्री फारेनहाइट। सो अगर घर से आज निकल ही रहे हो, डोंट लेट दैट 54 डिग्री फारेनहाइट फूल यू। एक लाइट जैकेट कैरी करना, दैट्स गोना बी योर फ्रेंड टुडे। एंड गुड न्यूज फॉर योर कम्यूट, आज रेन का जीरो सीन है। लास्ट 24 आवर्स में प्रेसिपिटेशन वाज जीरो एंड द नेक्स्ट 24 आवर्स में भी 0 मिलीमीटर्स इज एक्सपेक्टेड। मतलब कि आज अम्ब्रेला को साथ ले जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्काई ऑल डे क्लियर रहेगा एंड टेम्परेचर विल रेंज फ्रॉम अबाउट 53 डिग्री टू 74 डिग्री फारेनहाइट। और आफ्टरनून में सनशाइन के साथ टेम्परेचर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। फील्स लाइक टेम्परेचर विल गो अप टू 77 डिग्री फारेनहाइट। कल का हाई दो 76 डिग्री फारेनहाइट था, सो टुडेज हाई इज प्रीटी मच इन द सेम लीग। वेदर भी आज कह रहा है व्हाई चेंज व्हेन यू आर परफेक्ट, राइट। आज के लिए क्विक रिमाइंडर है कि बाहर निकलोगे तो लेयर के प्लेयर बनकर निकलना, और साथ साथ में अपना वाटर बॉटल कैरी करना, बिकॉज यू गॉट टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और साथ साथ में SPF 50 वाला सन प्रोटेक्शन भी लगाकर जाना एंड लगा के रखना मिर्ची। बोले तो मिर्ची मॉर्निंग्स पर प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मिर्ची वाइब्स बनाकर रखो। मुझसे कनेक्ट करो सोशल मीडिया पर, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट। Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज योर लिटिल डोज ऑफ बॉलीवुड मसाला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. सो फाइनली शाहरुख खान हैज स्पोकन अबाउट, गेट दिस, धुरंधर.
1: मिर्ची वॉच इट.
0: So during his Ask Me Anything session on X, a fan went straight for the question we all secretly wanted answered. Have you seen Dhurandhar? And SRK ka answer kya tha? Loved both the parts. Fantastic by the whole team. Bas itna hi. But you know Bollywood fans. Ek line from the king, SRK, and suddenly everyone's become a film critique. The Ranveer Singh starrer Dhurandhar ka first part released hua tha December 2025 mein, followed by Dhurandhar The Revenge, which released pretty soon after that. And now months later, SRK has officially given both parts his thumbs up. Ab dekho yaar, Shahrukh ka review toh mil gaya hai, lekin tumhara kya review hai movie ka? 5 star, 4 star ya phir classic no star? Jo कुछ भी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मुझे बता सकते हो तुम. डीएम करो मुझे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रेस, और व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244. फटाफट से अपने मैसेजेस ड्रॉप करो, मुझे फॉलो करो एंड बने रहो मिर्ची मॉर्निंग्स पर. आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स जस्ट फॉर यू. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: जय कन्हैया लाल की।

0: आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये भजन अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है भजन कुमार। फॉलो मी ऑन माई चैनल।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। बर्थडे स्क्वाड रेडी हो जाओ क्योंकि आज की डेट इज बेसिकली अ वीआईपी बर्थडे पार्टी। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू यू, खाओ पियो ऐश करो। और अब ये सुनो कि आज है टॉम हार्डी का हार्डी बर्थडे। गेट इट, इंसेप्शन एंड मैड मैक्स फ्यूरी रोड में तुमने इन्हें देखा होगा। देन वी गॉट टॉमी ली जोन्स फ्रॉम मेन इन ब्लैक, ऑलिवर स्टोन द गुड वाइफ फेम, जॉश चार्ल्स एंड बेन श्वार्ट्ज। हाँ, ये वही वॉइस बिहाइंड सोनिक द हेजहॉग है। रॉयल्टी भी अटेंडेंस लगा रही है आज के दिन, प्रिंस हैरी और स्पेन की क्वीन लेटिज़िया। इन दोनों का भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। और स्पोर्ट्स और म्यूजिक भी फुल ऑन पावर में है। एनएफएल लेजेंड डैन मरीनो, स्ट्रे किड्स के फेलिक्स ली एंड ताइवानीज पॉप आइकॉन जॉलन साई का भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। तो अगर आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है तो तुम्हारा सेलिब्रिटी बर्थडे ट्विन लिस्ट काफी इंप्रेसिव है। बस अब उनके जैसा बैंक बैलेंस मिल जाता तो लाइफ अलग बन जाती है ना। तो तुम बताओ तुम्हारे बैंक बैलेंस में आज तुम किस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। यू कैन सेंड मी और शाउट आउट अगर किसी को बर्थडे विश करना है तो, या फिर तुम मुझे बता सकते हो तुम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। अपने बर्थडे केक और आउटफिट के पिक्चर्स भेज सकते हो मुझे, या फिर ऐसे ही अपनी खुशी शेयर कर सकते हो मेरे साथ इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिज, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर 9033647244 इज माय नंबर। गणेश उत्सव कैसा चल रहा है ये भी बता सकते हो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Radio Mirchi, it's hot.

0: मैं तो थक गई भाई साहब, इसलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। मेरा नाम है प्रिसिला, अब तुम सुनने वाले हो मिर्ची मॉर्निंग्स पर गोल्ड रेट अपडेट।
1: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at 4290, 4290 डॉलर पर ट्राई ऑन्स के साथ गोल्ड के प्राइजेस आज ट्रेड कर रहे हैं। आइए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी हो, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, RajJewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें और 0% इंटरेस्ट पे, जीरो डाउन पेमेंट के साथ स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसमें ज्वेलरी अप्रूव होने पे आज घर आपके साथ जा सकती है और 9 इंस्टॉलमेंट्स में बिना किसी इंटरेस्ट के आप पे कर सकते हैं। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड रेट अपडेट सुना तुमने मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिवली। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: हेलो, मैं हूँ प्रिसला। तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिलिट्री मॉर्निंग्स। और सुनना है कि नहीं सुनना है कि आज तुम्हारे सितारे क्या कह रहे हैं? अरे सुनना है ना, तो लेट्स फाइंड आउट।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: एरीज यानी कि मेष राशि, पार्टनरशिप्स और इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोकस रहेगा। टीम वर्क करो और अपनी इंडिपेंडेंस का पासवर्ड ना किसी के हाथ में मत दे दो। लकी कलर तुम्हारा है रॉयल ब्लू। लकी नंबर आज है 7। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, प्रेशर में काम करने की बजाय स्मार्टनेस में काम करो ना यार। रूटीन को थोड़ा सा रीमिक्स करो और डेलीगेशन से वर्कलोड हल्का करो। हर काम खुद करना इज नॉट अ पर्सनैलिटी ट्रेट, ट्रस्ट मी। लकी कलर इज सेज ग्रीन। लकी नंबर इज 4। जेमिनी यानी मिथुन राशि, क्रिएटिव एनर्जी हाई है आज यार। क्लाइंट कॉन्वर्सेशंस और न्यू ट्रेनिंग से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। एक्सपीरियंस लोगों की एडवाइस को सीरियसली लो, और गूगल जो है वो सब कुछ नहीं जानता है, समझे। लकी कलर फॉर यू इज कोरल। लकी नंबर इज 3। कैंसर यानी कर्क राशि, आज पैशंस और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स स्पॉटलाइट में है। हॉबी को कभी टाइम मिले तो करूंगा वाली कैटेगरी से बाहर निकालने का टाइम आ चुका है। जो दिल को एक्साइट करे उसे थोड़ा सा दिल के करीब रखो। लकी कलर इज लैवेंडर। लकी नंबर इज 9। लियो यानी कि सिंह राशि, आज तो यूनिवर्स का मैसेज काफी सिंपल है तुम्हारे लिए। स्लो डाउन, एनर्जी रिचार्ज करो बिफोर यू जंप बैक इनटू फुल लायन मोड। इवन सिम्बा नीड्स अ नैप बड़ी। लकी कलर इज मस्टर्ड येलो। लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, कुछ डेड एंड एक्चुअली कार्मिक रीडायरेक्शंस हो सकते हैं। अपनी सेल्फ वर्थ को प्रोटेक्ट करो हर हालत में, स्पेशली क्लोज रिलेशनशिप्स में। मनी मैटर्स को क्लैरिटी से एड्रेस करो। दिल सॉफ्ट रखो लेकिन बाउंड्री स्ट्रांग होनी चाहिए। लकी कलर इज प्लम। लकी नंबर इज 6। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची राशि जोन ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसला। मुझे बताओ व्हाट्स योर राशि। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: चलिए देखते हैं आप और हम मिलकर के आज सितारे क्या कह रहे हैं। मेरा नाम है प्रिसला, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी कि तुला राशि, बिग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टाइनी स्टेप्स लेना जरूरी है। कंसिस्टेंसी पर फोकस करो, नए हैबिट्स बिल्ड करो और पुराना बैगेज जो है उसे डोर पर ही छोड़ दो। इमोशनल लगेज का एक्स्ट्रा बैगेज फी बहुत हाई होता है। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 2। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, ट्रस्ट द प्रोसेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज होराइजन पर ही हैं। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो और वर्कप्लेस ड्रामा से अपना डिस्टेंस बना के रखो। ऑफिस है, बिग बॉस का सेट नहीं है। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, हेल्थ बेटर होगी और नेटवर्किंग से करियर डोर्स ओपन हो सकते हैं। सो यस, थोड़ा सा सोशल होना पड़ेगा तुमको। हर लिंक्डइन कनेक्शन को इग्नोर करना भी स्ट्रेटेजी नहीं होती है ना। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 5। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, वर्क प्लेस ऑब्स्टिकल्स फाइनली क्लियर होने के साइंस हैं और न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो सकती है। बेसिकली करियर का ट्रैफिक जैम थोड़ा खुल रहा है। लकी कलर इज चारकोल ग्रे, लकी नंबर इज 11। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, माइनर डेली प्रॉब्लम्स को ओवरथिंक मत करो, लॉन्ग टर्म हार्मनी पे फोकस करो। फाइनेंशियल गेन्स और करियर सक्सेस के स्टार्स सपोर्टिव हैं, बिग पिक्चर को देखो। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 22। दैट राइम्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, यू आर मोर फ्री देन यू थिंक। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो यार, बिकॉज परफेक्शन का फ्लाइट कभी कभी परमानेंटली डिले हो जाता है। टेक दैट मूव, सेंड दैट टेक्स्ट, टॉक टू दैट पर्सन इवन इफ इट्स small thing। Lucky color is sea green, lucky number is 12। And that's your Rashi Zone का part 2। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ, reminding you कि stars जो है सिर्फ advice दे सकते हैं। Steering wheel अभी भी तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारे हाथ में तुम्हारी मिर्चीदार vibe भी है। बने रहो मिर्ची mornings पर, connect करो मुझसे। मिर्ची प्रिस is my handle name on Instagram and X, and WhatsApp पर 9033 मिर्ची is my number, that's 9033 6472 44। Stay tuned and stay hot।

0: कभी कुछ ऐसा होता है ना कि आप कुछ पढ़ लेते हो और वो चीज जो है वो आपके दिमाग में जाकर एकदम सही जगह पर पिंच करती है। ऐसा ही कुछ मैंने कल पढ़ा, और जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा यार ये तो मैं आपको सुना के ही रहूंगी।
1: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. और मैंने ना चंद लाइन्स पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कितना रेजोनेट करता है यार लाइफ से। मैंने कहा कि यार आप बड़े शौकीन हो इन सारी चीजों के, तो आपको भी सुनाती हूँ ये चीज। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था, थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था, बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। दिखा, लगा ना, वाकई में लगा ना, मतलब हम अपनी लाइफ में अलग ही अडल्टिंग का जोन जो है वो लेकर बैठे हुए होते हैं, अपनी लाइफ चल रही होती है, कट रही होती है, फिर एकदम से आप कुछ पढ़ लेते हो, आप कुछ देख लेते हो और फिर आपको लगता है ओ नो, हाँ यार वो भी क्या जमाना था और बचपन हमें जरूर याद आना था। तो चलो फिर थोड़ा और याद करते हैं 90 के जमाने को, और मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को उसी तरफ घुमाती हुई 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अब भी देखती थी ना, देख देख कर उछल जाया करती थी। तो जब उनकी मूवी चाइना गेट आई, उसे मैं कैसे मिस कर सकती थी यार।
1: मिर्ची VCR।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड नहीं, मैं इतना डिसीजन मेकिंग में नहीं थी कि सबको उठा के थिएटर लेकर चली जाती कि नहीं नहीं मुझे चाइना के थिएटर में देखनी है। नहीं नहीं, इतनी हम लोगों की औकात नहीं हुआ करती थी एज किड्स। ये तो केबल पर जब मूवी आई तो मैंने उसको मिस नहीं किया। एंड वेल, ये समीर सोनी की डेब्यू फिल्म तो थी ही थी, लेकिन टेक्निकली समीर सोनी वॉज नॉट अ हीरो इन द फिल्म, ही वॉज एक्चुअली डूइंग अ सपोर्टिंग रोल, क्योंकि मेन लीड्स तो यार अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डोंगजप्पा, ओम पुरी, ये सब थे। और इस फिल्म में समीर सोनी के ऑपोजिट थी ममता कुलकर्णी। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाइना गेट का पोस्टर बना था ना, उस पर ममता कुलकर्णी कहीं नजर नहीं आई थी। और इसके पीछे रीजन ये है कि ममता कुलकर्णी और राजकुमार संतोषी के बीच में एक मेजर फॉल आउट हुआ था। हालांकि इस लड़ाई के बाद वो वापस मूवी करने के लिए आई तो सही, लेकिन उसके बाद राजकुमार संतोषी ने उन्हें अपनी फिल्म में ज्यादा प्रमोट नहीं किया। और जो पोस्टर बना चाइना गेट का, उसमें बाकी सारे एक्टर्स के साथ उर्मिला मातोंडकर की पिक्चर लगाई गई, ना कि ममता कुलकर्णी की। हालांकि उर्मिला वॉज इन द फिल्म फॉर जस्ट वन सॉन्ग एंड दैट वॉज छम्मा छम्मा। लेकिन ऑनेस्टली पूरी फिल्म करने के बाद भी ममता को इतना नाम नहीं मिला जितना कि उर्मिला मातोंडकर को एक गाना करने के बाद मिला था। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी कास्ट में एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपना रोल निभाने के लिए न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था। बताऊंगी आपको आगे थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मेरा ना समीर सोनी पर बहुत बड़ा क्रश था एंड आई न्यू ही इज अ मॉडल क्योंकि मैंने ना उनकी एक झलक दूध दूध दूध दूध वो वाले एड में देखी थी और मैं

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया. बोलो ये कौन सी मूवी का डायलॉग है?
0: Mirchi. Chat room.
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और सही जवाब है चाइना गेट. मतलब चाइना गेट में न जाने कितने सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो कि आज तक मुझे याद है. एक तो ये डायलॉग, एंड देन देयर वाज दिस वन और डायलॉग जिसमें कि प्लेटफॉर्म का सीन होता है और एक जनाब दूसरे जनाब से पूछ रहे होते हैं कि भाई साहब आपके बजे में कितने घड़े हैं. अगला इंसान कहता है नौने पौ. I still use this dialogue in my life. अगर पौने नौ बज रहे होते हैं और कोई मुझसे पूछ ले कि कितने बज रहे हैं तो मैं नौने पौ ही बोलती हूँ, पौने नौ नहीं बोलती. लेकिन कमिंग बैक टू चाइना गेट, हाँ, ये जो फिल्म बनी थी इसके अंदर जो जगीरा का रोल प्ले करने वाले मुकेश तिवारी थे, जिनकी की ये पहली ही फिल्म थी, उन्हें न जाने कितने सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था फॉर हिज विलेनियस रोल. हाँ, और किया भी क्यों ना जाना चाहिए था, इतना सराहा गया था उनका ये कैरेक्टर बिकॉज उन्होंने काम ही ऐसा किया था. लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अपने कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए, उसका लुक मेंटेन करने के लिए और जगीरा जैसा फील करते रहने के लिए मुकेश तिवारी ने न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था. हाँ जी, वो बिल्कुल अपना परफ्यूम इस्तेमाल किया करते थे. एंड ही डिड नॉट टेक अ शावर जस्ट सो दैट ही लुक्स एज गंदा एज जगीरा. इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग. सर्दियों में हम भी यही करते हैं. हाँ, वी ऑल्सो टेक अप अ कैरेक्टर एंड वी वॉन्ट टू लुक लाइक दैट कैरेक्टर. एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि बहुत सारे लोग शावर नहीं ले रहे होते हैं सर्दियों में. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: आपको दूरदर्शन का गुमशुदा की तलाश सेगमेंट याद है?
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। डीडी वन पर रोज शाम को जब न्यूज आया करती थी तो उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था, गुमशुदा की तलाश। याद तो हो गई यार, जो आज हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए एक ताना बन के रह गया है कि हम अब उनके लिए कहते हैं कि तुम आते नहीं हो इसलिए हमें गुमशुदा की तलाश है। लेकिन ये कभी एक सीरियस सेगमेंट हुआ करता था जहां गुमे हुए लोग जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही होती थी वाया द टेलीविजन। बट एक राज की बात बताऊं मैं आपको, जब इस सेगमेंट में गुमशुदा लोगों की पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई जाती थी ना, तो ऑनेस्टली अगर वो इंसान मेरे पास भी बैठा होता ना तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाती। वैसे तो आज भी किसी लड़की का फोटो देखकर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना मेकअप ऑफ कोर्स किसी का चेहरा समझ नहीं आता और बिना मेकअप कोई आजकल फोटो नहीं खिंचवाता। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम बच्चे ना इस सीरियस सेगमेंट को मजाक बना दिया करते थे। जब कोई फोटो स्क्रीन पर दिखती थी ना तो हमारा बोलना शुरू हो जाता था एक दूसरे की टांग खींचते हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए कि अरे देख तेरी फोटो दिखा रहे हैं टीवी पर। और पता नहीं इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी और छिड़ने वाली बात क्या थी कि छेड़ने वाला छेड़ता था और छिड़ने वाला भी बुरी तरीके से तुनक जाता था और छिड़ जाया करता था। बट जो भी था भाई, बात ये भी कितनी सही है ना कि आज किड्स हम सीरियस चीज में भी फन ढूंढ लेते थे। एंड आई होप कि आप आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हो, बिकॉज लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले सकते बाबू मुशाए। क्यों? क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स ऑन अस। इसी बात पर ताल से ताल मिला। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: वो गाना है जो आपको ऑफिस में वायरल कर सकता है। मोहित चौहान ने गाया इतनी मस्ती बहना इस गाने को, आई स्वेयर। यू नो व्हाई आपको वायरल कर सकता है? क्योंकि अगर इस गाने को आप ईयरफोन्स पे सुन रहे हो ना, तो आप आसपास की दुनिया जो है ना उसको तो भूल ही जाओगे, और फिर आसपास की दुनिया को भूलने के बाद जो आप अपने आप में खो जाओगे और नाचते हुए नजर आओगे और अजीब अजीब सी आप क्रियाएं करते हुए नजर आओगे ना, तो ऑफकोर्स वायरल होना तो बनता है ना बॉस। ये गाना ही वही है जो आपको दुनिया भुला देता है, आपकी करंट प्रॉब्लम्स जो है वो भुला देता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की ताल पर नहीं, इस गाने की ताल पर नचा देता है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और हम जो म्यूजिक के इतने दीवाने हैं मेरे यारा, वही तो आ जाते हैं रोज रोज ये कहने के लिए कि मान ना मान करो गानों की पहचान। अब सिंस मुझे पता ही है कि आप म्यूजिक के इतने फैन हो और म्यूजिक आपके लिए थेरेपी है, तो यहीं पर मैं एक दाव खेल जाती हूँ और रोज आपके लिए एक सवाल गाने की सूरत में चलाती हूँ और दो गानों की धुनों को मिक्स करके आती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि बताओ यार ये दोनों गाने कौन से हैं। तो आज की जो दो धुनों का मिक्स है वो है कुछ यूं। गिव इट a listen।

0: बस जी, अब आपको डीएम करना है माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि ये दो कौन से गाने हैं जो अभी आपने सुने। मिर्ची सारा इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, याद रखिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आई एम नॉट टू श्योर आपने अर्जुन रामपाल और मनीषा कोइराला की मोक्ष देखी है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं लगा, लेकिन मैंने जरूर देखी है क्योंकि यार केबल पे जो फिल्म आती थी ना रात के 12 बजे के बाद वो मैं डेफिनेटली देखा करती थी।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, ये फिल्म नहीं लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी धुन यानी कि जो म्यूजिक है इस पूरे पूरे गाने का वो कट कॉपी पेस्ट है, थैंक्स टू मिस्टर राजेश रोशन जिनका म्यूजिक इस गाने में दिया गया है। द गाना इज दिस वन।

0: जो सनसनाए, क्यों जिस्म थर थर आए, कोई बताए मुझको।
1: और इसे उठाया गया है फ्रॉम एन आर्टिस्ट जिनका नाम है वैंगेलिस, और इन्होंने ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना के बस छोड़ दिया था, शायद इसी दिन के लिए कि एक दिन राजेश रोशन आए, यही म्यूजिक ऐसा का ऐसा उठाएं और इसको अपने गाने के बेड पे लगाएं और गाना चलाते जाएं।

फिलहाल के लिए डेफिनेटली नॉट दिस ट्रैक, लेकिन कमिंग अप अनदर वन आपके लिए, झूम जाओगे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम आपके एक और एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके एक और देखे क्या
0: नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार, जज करना है तो जज कर लो। मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद हैं। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है, यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है। सब हॉस्पिटल में जो थिएटर होता है, ऑपरेशन थिएटर, उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की किलकारी आए। और धिकताना गाना वहीं से ही शुरू होता है, राइट। एंड जब डॉक्टर चाची जो है वो बाहर आती हैं और ये खबर सुनाती है कि लड़का हुआ है, एट दैट टाइम सलमान खान एकदम एक्साइटेड होकर हिमानी शिवपुरी को अपनी गोद में नहीं उठा लेते हैं। दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन। उस वक्त दैट सीन वॉज एक्चुअली नॉट प्लान्ड, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था। एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था, बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ। And she in an interview told कि you know सलमान खान was a prankster and you know ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी। अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है, आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं। आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: डियर, आजकल के जमाने के नेम लेबल और हमारे टाइम में स्टिकर कहलाने वाले,
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज स्टेशनरी देखती हूँ ना तो चौंक जाती हूँ। आजकल तुम्हें पता है, जो तुम्हारी आज की पीढ़ी है उन पर तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन पर नाम टाइप ही आते हैं, मेड टू ऑर्डर। लेकिन बैक इन आवर स्कूल टाइम्स, स्कूल खुलने से पहले इट यूज्ड टू बी अ टास्क कि हम मम्मा के साथ बैठकर अपनी बुक्स और कॉपीज पर कवर चढ़ाया करते थे, फिर उसके बाद तुम्हें चेरी ऑन द टॉप की तरह बुक्स पर लगाया करते थे, और फिर लास्ट लेग होता था सब किताबों पर हमारा नाम, क्लास और सेक्शंस लिखे जाना। और तुम होते भी तो कितनी वैरायटी के थे यार, कहीं फ्लावर्स वाले तो कहीं कार्टून्स वाले। और बीटी तो तब होती जब स्कूल अपनी तरफ से बोरिंग वाले लेबल्स खरीदने को कंपल्सरी कर चुके थे, तब लगता था कि कितना काम है यार। लेकिन आज जो काम करते हैं उनके बीच लगता है कि यार वो भी क्या मस्त काम हुआ करता था जिसे हम कितनी सीरियसली लिया करते थे। एक दिन अपने फन के लिए आई डिसाइडेड कि आज मैं अपने नेफ्यू की किताबों पर कवर चढ़ाऊंगी और स्टिकर्स लगाऊंगी और उनपे उसका नाम, क्लास, सेक्शन ये सब लिखूंगी। मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस काम को लेकर। फिर पता लगा कि मेरी भाभी ने तो किसी को पैसे देकर ये काम करवा लिया है और लेबल पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज प्रिंटेड। सुन रहे हो, तुम्हारी आज की जनरेशन भी ना काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन मुझे फिर भी तुम पसंद हो। तुम्हें आज भी अपने ख्यालों में पढ़ती तुम्हारी सारा। एंड नाउ कमिंग अप अ ट्रैक जो आज तो प्यार मोहब्बत की याद दिलाता है, लेकिन ये डायलॉग हमने क्लास मॉनिटर्स से बहुत सुना है जब हम बातें खूब किया करते थे क्लास में, तो क्लास मॉनिटर्स यही कहा करते थे कि कुछ ना कहो। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Uff, ये सवाल हम अक्सर प्यार से करते ही करते हैं. कौन सा सवाल? भाई कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना. बट डू यू नो, इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है. बट इजंट इट कूल कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया. और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक, संदीप चौटा. और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देख कर होने लगा कुछ ऐसा असर, खुद से हुई मैं बेखबर, मैं हूँ यहाँ, दिल मेरा है वहाँ. अरे अरे अरे अरे, आप कहाँ चल दिए, अभी तो ये गाना आपको पूरा सुनना है यार. तब इस गाने में गहराई से खो जाइएगा, पर पहले मेरा खुदा हाफिज कबूल तो करिए. तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे, सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

Mirchi. It's hot

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जींस श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुझे नहीं पता कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, बट मुझे तो इन दोनों को देख के बहुत मजा आया. आई थिंक द एंटायर इंडिया लव्ड इट. पुरानी जीन्स पे हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया. और रोज मैं एक फिल्म के बहुत सारे किस्से कहानियां लेकर के आती हूँ. आज आज जो फिल्म है वो डिम्पल कपाडिया की कमबैक फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म की वजह से उन्होंने एक और बेहतरीन फिल्म छोड़ी थी, बिकॉज शी हैड ऑलरेडी गिवन डेट्स फॉर दिस फिल्म. अब ये कौन सी फिल्म थी बताओ बताओ. आफ्टर 14 ईयर्स बॉबी के बाद जब उन्होंने ये फिल्म की, उनका हीरो भी सेम था, लेकिन सिर्फ एक हीरो नहीं था इस फिल्म में, दो हीरोज थे. अब इससे ज्यादा क्लूज नहीं दे सकती हूँ, सोच के रखो. मैं गानों के उस पार बताती हूँ आपको. पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया, यू आर लिसनिंग टू मी ऑन ऑफकोर्स मिर्ची, इट्स हॉट.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

ये फिल्म पहले गई थी डिम्पल कपाडिया के पास और उन्होंने मना कर दी। इसलिए मना कर दी क्योंकि वो ऑलरेडी सागर को साइन कर चुकी थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वन फिल्म दैट वी ऑल लव्ड, वन फिल्म जिसमें हमें श्रीदेवी बहुत बहुत पसंद थी। बताओ कौन सी? सदमा। वो फिल्म जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं नहीं देख पाती, अगर किसी भी चैनल पे आती है ना मैं नहीं देख सकती, बिकॉज उसका क्लाइमैक्स शेक्स मी। सो वो ना मुझे एक अच्छे खासे हैंगओवर में छोड़ के जाता है, तो मैं नहीं देखती हूँ। लेकिन ये फिल्म क्रिटिकली अक्लेम फिल्म जिसने श्रीदेवी के करियर में सबसे बड़ा बदलाव लाया और उसके बाद से उनको हिंदी फिल्में और ज़्यादा मिलने लगी थी। अब सदमा पहले गई थी डिम्पल कपाटिया के पास, बट डिम्पल कपाटिया ऑलरेडी एग्जैक्ट वही डेट्स दे चुकी थी सागर को, तो शी डिनाइड डूइंग द फिल्म। नाउ इन अ वे इट वॉज गुड बिकॉज हमें श्रीदेवी द वेटरन एक्ट्रेस भी एकदम अलग ही अवतार में देखने को मिली, है ना। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ सागर की बातें हो रही है आज, तो बस इस फिल्म के गाने भी होंगे। ऑल यू गॉट टू डू इज सिट बैक एंड रिलैक्स, कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये वाला सीन तो मतलब पूरा इंडिया नहीं भूल सकता। पुरानी जीन्स पे है आप श्रेया के साथ, और सागर की बात हो, डिम्पल कपाटिया का ये सीन की बात नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? वेल, द फ्लीटिंग टॉपलेस सीन जो उन्होंने किया, जब एक गाना शूट होता है और उनका जो टॉप है वो चट्टान में फंस जाता है, एंड शी सडनली गेट्स अप एंड ओहो। तो सागर की बातें करते करते इस फिल्म के सारे किस्से जो हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, क्योंकि देखो भाई मैं अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आती हूँ। अच्छा, इस फिल्म में इवन दो ऋषि कपूर वॉज द मेन कैरेक्टर, फिर भी ही वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। क्यों? उसके पीछे एक मेजर रीजन था। रीजन तुम्हें तो बताइए, मैं ऐसे नहीं बताती हूँ, कभी कभी आपका ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो गाने सुन करके वापस आओ, अभी शेयर करूंगी। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषि कपूर इसलिए डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उनको लगा था कि ये जो फिल्म है ये बॉबी के फेमस होने के बाद, पॉपुलर होने के बाद, हिट होने के बाद आ रही है। इसमें डिम्पल कपाडिया और ऋषि कपूर की केमिस्ट्री जो है वो एकदम बॉबी जैसी रिपीट होगी, विच डिड नॉट हैपन। ही एक्चुअली अक्यूज द डायरेक्टर रमेश सिप्पी, उन्होंने बड़ी सारी फिल्म मैगजीन्स में उस टाइम पे इंटरव्यू दिया कि उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा डिटेल में दिखाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रमेश सिप्पी फोकस्ड मोर ऑन शोइंग यू नो द कम बैक ऑफ डिम्पल कपाडिया। इस चक्कर में उनका कैरेक्टर साइडलाइन हुआ और ही डिड नॉट गेट द लॉरल्स फॉर द फिल्म। इट वॉज डिम्पल। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एक आर्टिस्ट भी आए थे इस फिल्म के प्रीमियर पे, वो कौन थे और कितने अलग ढंग से वो आए थे ये इंटरेस्टिंग बताऊंगी वापस और श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस समय के अखबारों की ये सबसे बड़ी खबर हुई थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज बात हो रही है सागर की। इट वॉज अ कमबैक फिल्म डिम्पल कपाडिया की। 14 साल के बाद वो फिर से कैमरा फेस कर रही थी, मतलब बॉबी करके वो काका यानी राजेश खन्ना के साथ बस शादी में सेटल हो गई थी और उसके बाद उन्होंने फिल्म को टाटा बाय बाय कह दिया था। आफ्टर 14 ईयर्स शी मेड अ कमबैक विद द फिल्म ऑफ कोर्स सागर एंड रमेश सिप्पी वाज डायरेक्टिंग द फिल्म। अब जब इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया तो उसके मेन हीरो फिल्म के लीड्स यानी ऋषि कपूर या फिर कमल हासन नहीं थे, बल्कि पता है कौन थे? एमएफ हुसैन साहब, द रिनाउंड पेंटर एमएफ हुसैन साहब। वो इस फिल्म का प्रीमियर बेयर फुट नंगे पैर देखने आए थे और फिल्मी मैगजीन्स ने न्यूज़पेपर ने बड़े बड़े आर्टिकल्स इस पे लिखे थे। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें विद मी श्रेया। वापस आओ और भी करेंगे।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओए जर्नल सिंह, ओए जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

कहते तो ये भी हैं कि उस समय रमेश सिप्पी एंड डिंपल कपाटिया दोनों का अफेयर हुआ था ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ सागर फिल्म की बात हो रही है, एक ऐसी फिल्म जो 14 साल के बाद फिर से डिंपल कपाडिया को बड़ी स्क्रीन पे दिखाने वाली थी, क्योंकि उससे पहले तो डिंपल कपाडिया ने बॉबी की और मेजर हिट हुई, स्मैशिंग हिट हुई एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन फिर वो राजेश खन्ना के साथ शादी करके सेटल कर गई। और फिर उसके बाद रमेश सिप्पी की इस फिल्म से उन्होंने कमबैक किया। अब सिप्पी साहब और डिंपल कपाटिया का अफेयर हुआ और इसके बारे में सबने जम करके लिखा। रमेश सिप्पी चाहते थे कि डिंपल कपाटिया सागर फिल्म करें और ना कि सदमा करें, सदमा भी उनको ऑफर हुई थी और भाई डिंपल कपाटिया ने हाँ कह दी। इस बात को लेकर के भी फिल्मी मैगजीन्स ने बहुत कुछ लिखा था। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, आज इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक इस फिल्म के गानों के साथ भी, तो बस वापस आओ

Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऐसा बहुत कम बार होता था उस टाइम पे, क्योंकि एक्टर्स के बीच में ना बहुत राइवलरी होती थी। जब एक एक्टर दूसरे एक्टर की खुल करके तारीफ करे, और कमल हसन ने सागर फिल्म में ऋषि कपूर के लिए किया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। वेल, कमल हसन ने ऋषि कपूर की जम करके ऑन स्टेज तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने इतने एक्टर्स को देखा है, इतने एक्टर्स से मिले, लेकिन ऋषि कपूर एक्सट्रीमली हैंडसम, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग है। एंड ही ऑल्सो वेंट ऑन टू से कि ऋषि कपूर को खुद नहीं पता है कि वो कितने कमाल के लगते हैं, और लोगों का दिल, लड़कियों का दिल वो कैसे चुरा लेते हैं जैसे ही ऑन स्क्रीन आते हैं। वैसे कमल हसन इस फिल्म के लिए दो कैटेगरीज में फिल्म फेयर अवार्ड्स की नॉमिनेट हुए थे। कौन सी थी वो दो कैटेगरीज और किसके लिए जीते? आई विल लेट यू नो, कम राइट बैक। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

कमल हसन गॉट नॉमिनेटेड इन बोथ द कैटेगरीज। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, सागर फिल्म की बात हो रही है और कमल हसन को ना दोनों कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला था इन फिल्म फेयर। ही गॉट नॉमिनेटेड इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी, ऑल्सो इन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी, और जीता किस में उन्होंने? बेस्ट एक्टर। मतलब ये तो एक्चुअली में विन एंड विन सिचुएशन थी कि भाई एक्टर भी हैं, सपोर्टिंग एक्टर भी हैं, एक ना एक अवार्ड तो उनके नाम होना ही था। बट यस, इट वेंट टू बी बेस्ट एक्टर वाली कैटेगरी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ अभी इस फिल्म के गाने शुरू करते हैं। कम राइट बैक।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

टू बैक एक्शन फिल्मों के बाद रमेश सिप्पी साहब को लगा कि भाई मैं भी प्यार में हूँ तो कुछ प्यार भरा बनाए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। वेल, रमेश सिप्पी साहब ने ना 3 फिल्में बैक टू बैक बना डाली थी एक्शन की, यानी शोले में 1975, वेल देन शान हैपेंड इन 1980, उसके बाद उनकी तीसरी फिल्म थी शक्ति 1982, और ये तीनों सुपर डुपर हिट फिल्म थी। बट कहते हैं कि सागर के टाइम पे रमेश सिप्पी वॉज इन लव, वॉज हैविंग एन अफेयर विद डिम्पल कपाटिया, एंड ही वॉन्टेड टू शो डिम्पल जी इन, यू नो, इन अ रोमांटिक एंगल, एक ऐसी फिल्म जिसमें रोमांस दिखे। तो उन्होंने इन तीनों एक्शन फिल्मों के बाद डिम्पल कपाटिया और दो हीरोज के साथ बनाई थी सागर, विच वॉज अगेन अ स्मैशिंग हिट। वेल, इसी फिल्म का गाना आपके लिए Only on Purani Jeans, you're listening to me on Mirchi. It's hot.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। 14 इयर्स के बाद जिस फिल्म से अपना कमबैक किया था डिंपल कपाटिया ने। अच्छा, फिल्म की बातें तो बहुत सारी होती ही रहेंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इस समय ये सुनो। और इसमें पंचमदा का ये गिटार है शायद, ये जो इस गिटार को वो स्ट्रम कर रहे हैं, अभी बड़ा खूबसूरत सा एक पीस आएगा, वो भी सुनिएगा। आर डी बर्मन साहब के कॉम्पोजिशन, जावेद अख्तर साहब के लिखे हुए ये लाइन, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या, कमिंग अप राइट नेक्स्ट, डिंपल कपाटिया की आंखों पे लिखा गया था ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ सागर फिल्म की बात हो रही है और अगला गाना ये ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सो इस गाने में डिम्पल कपाटिया इज वेयरिंग वेरी ब्यूटीफुल ड्रेसेस। हाँ, पूरे गाने में उन्होंने ड्रेसेस पहनी है और सागर किनारे बहुत सिंपली शूट किया गया ये गाना। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाटिया की केमिस्ट्री तो वैसे ही बॉबी में हमने देख ली थी, एकदम यू नो पर्दे पे आग लगा देती थी इन दोनों की केमिस्ट्री। सो दे डिडंट हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ स्टेप्स, तो कैजुअली बस हल्का फुल्का डांस करते हुए एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके ये गाना जब आता है ना, सागर किनारे दिल ये पुकारे, ओहो हो। किशोर दा और लता जी के पास पंचम दा की ऑफ कोर्स धुन है कमिंग अप राइट नेक्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा,

पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ जाने का टाइम यानी लेट्स हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट डेडिकेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्हें बादलों से थोड़ा डर लगता है और बादल के गरजते हुए को वो एक एक्सक्यूज लेते हुए सामने वाले से चिपक जाते। हाउ रोमांटिक। वैसे मेरी लाइफ में ये सिचुएशन नहीं आई। हमेशा मैंने ऐसी सीन्स को या ऐसे गानों को देख करके सोचा है ना कि कभी तो ऐसा होगा कि कोई बादल गरजेगा और कोई मेरे साथ ऐसा होगा जिससे मैं चिपकना चाहूँगी, बट इट हैज़ नेवर हैपेंड। बट एनीवे, आई विल कीप होपिंग कि ऐसा रोमांटिक सिचुएशन श्रेया की लाइफ में भी आए। ऑन दैट नोट, गुड नाइट, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो, एंड ख्याल रखो अपना। और मुझसे कुछ कहना है ना तो फेसबुक या इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव इज माई हैंडल, वहाँ पे बस DM कर देना।

0: मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं तो मिर्ची फिल्म जी गेम खेलने की बात कर रही थी। बाबू मोशाय हेलो जी हाय। सो द ड्रिल इज कि आपको इस गेम का हिस्सा बनने के लिए मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिर्ची श्रुति के डीएम में जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ एंड वी स्टार्ट विद द गेम। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है संदीप शुक्ला जी, हु इज कनेक्टेड विद मी फ्रॉम हैदराबाद। हेलो सर, कैसे हैं आप? तैयार हैं आज का गेम खेलने के लिए?
3: बिल्कुल श्योर।
0: ओके, गोविंदा की फिल्म जिसमें नंदू सबका बंधु होता है?
3: राजा बाबू।
0: क्या बात है, राजा बाबू में गोविंदा को किससे प्यार होता है?
3: करिश्मा कपूर।
0: करिश्मा कपूर की फिल्म जिसमें उनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है?
3: अच्छा, बीवी नंबर वन।
0: यस जी, बीवी नंबर वन में उनके हस्बैंड कौन है?
3: सलमान खान। सलमान खान।
0: सलमान खान की फिल्म जिसमें उनका पुनर्जन्म होता है?
3: करण अर्जुन। कितना आसान था।
0: करण अर्जुन में उनके भाई कौन है?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान एक डांस ग्रुप के डायरेक्टर किस फिल्म में बने हैं?
3: दिल तो पागल है।
0: क्या बात है, दिल तो पागल है मैं चाक धूम तुम कौन करता है?
3: उनके साथ माधुरी दीक्षित।
0: माधुरी दीक्षित की फिल्म जिसमें वो चंद्रमुखी बनी है?
3: देवदास।
0: देवदास में देव के बचपन का प्यार कौन है?
3: पारो। ऐश्वर्या।
0: यस, ऐश्वर्या राय एक अट्रैक्टिव चोर किस फिल्म में बनी है?
3: धूम टू।
0: यस, धूम टू में एसीपी कौन है?
3: अपना अपना ये अभिषेक।
0: अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसका नाम एक भगवान की आरती के नाम पे है?
3: ओम जय जगदीश।
0: ओहो, क्या बात है, मुझे लगा था यहाँ तो अटकेंगे आप, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओम जय जगदीश में सबसे बड़े भाई ओम कौन है?
3: अनिल कपूर।
0: अनिल कपूर की फिल्म जो कम्प्लीटली क्रूज पे शूट की गई है?
3: अरे दिल धड़कने दो।
0: दिल धड़कने दो में प्रियंका चोपड़ा के भाई कौन है?
3: रणवीर सिंह।
0: रणवीर सिंह लियारी के बादशाह किस फिल्म में बनते हैं?
3: धुरंधर।
0: धुरंधर में एसपी चौधरी कौन है?
3: संजय दत्त।
0: संजय दत्त किस फिल्म में अपने पापा को दिखाने के लिए फेक डॉक्टर बनते हैं?
3: मुन्ना भाई।
0: यस, मुन्ना भाई में सर्किट कौन है?
3: अरशद वारसी।
0: अरशद वारसी जर्नलिस्ट किस फिल्म में बनते हैं? चलिए कोई बात नहीं, बट इस गेम को इस लेवल तक जो पहुंचाया आपने उसके लिए ये टैग तो जरूर बनता है सर।
1: मिर्ची फिल्म जी।
0: तो बाबू मोशाय संदीप जी, जिस लेवल पे अटके अगर उसके आगे का गेम खेलना है देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के डीएम पे अपना नंबर भेजिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: दिल वाली गल कर ले, प्यार मेरे नाल कर ले, काम सारे गल कर ले मेरे यार। तू मेरी बाँ फड़ ले, आँखें ये आ पढ़ ले, सीने से दिल कढ़ ले मेरे यार। किन्ना सोना लग

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अपने अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाने के लिए मिर्ची फिल्मची गेम खेलने की बात कर रही हूँ। बाबू मोशाय हेलो जी हाय। तो इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, आज इस गेम की शुरुआत हमने ऑलरेडी कर दी है और संदीप जी हैदराबाद से हमारे साथ कनेक्टेड थे, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट। और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं शिवांगी जी, हुज कनेक्टेड फ्रॉम लखनऊ विद अस। सो शैल वी कंटिन्यू द गेम विद यू?
3: लवली, आई वुड लव टू।
0: ऑल राइट, अरशद वारसी जर्नलिस्ट किस फिल्म में बनते हैं?
3: काबुल एक्सप्रेस।
0: यस इट इज। काबुल एक्सप्रेस में उनके को वर्कर कौन है?
3: जॉन अब्राहम।
0: जॉन अब्राहम फोटोग्राफर किस फिल्म में बनते हैं?
3: गरम मसाला।
0: गरम मसाला में मैम्बो कौन है?
3: परेश रावल।
0: परेश रावल स्टार गराज के मालिक किस फिल्म में है?
3: हेरा फेरी।
0: यस इट इज। हेरा फेरी में लड़की का चक्कर किसका होता है?
3: सुनील शेट्टी।
0: सुनील शेट्टी किस फिल्म में अंजलि को भूलने नहीं वाले और ना उसको भूलने धड़कन में अंजलि की शादी किससे होती है?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार किस फिल्म में अमरीश पुरी का पपी खो देते हैं?
3: वो तो बहुत अच्छी बहुत फेमस मूवी है, मुझसे शादी करोगी।
0: ओके जी, तो इतना अच्छा जो परफॉर्म किया है आपने उसके लिए ये टैग तो जरूर बनता है। शिवांगी
1: मिर्ची फिल्म जी।
0: तो बाबू मोशाय, अगर ये गेम सुन के आपके अंदर का फिल्मची भी जाग रहा है तो उसको सोने मत दीजिएगा, क्योंकि कल एक बार फिर से इस गेम की शुरुआत जरूर होगी। राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स हॉट।

0: हाँ अभी भी बहुत कमी है, बट वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बस इस वाले काम की स्पीड ना थोड़ी बढ़ जानी चाहिए। आप देखो इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े कि भाई ये लड़की क्या ही बोल रही है। बेसिकली आज ना मैं अपने पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ अल्टीमेट फीमेल कॉप्स की डिस्कशन कर रही हूँ। और जब ये लिस्ट तैयार कर रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ दैट वी जस्ट हैव अ हैंडफुल ऑफ सच कैरेक्टर्स यार। तो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट शिवानी शिवाजी रॉय प्लेड बाय रानी मुखर्जी इन मर्दानी सीरीज। अब नंबर दो पे बात करते हैं डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी के बारे में प्लेड बाय शेफाली शाह इन द सीरीज दिल्ली क्राइम। तो अगर शिवानी शिवाजी रॉय खाकी की फायर है ना, तो वर्तिका चतुर्वेदी खाकी का कंपोजर है। दिल्ली क्राइम का बैकड्रॉप एक हॉरिफाइंग रियल लाइफ केस से इंस्पायर्ड इन्वेस्टिगेशन है और शेफाली शाह की डीसीपी वर्तिका उस इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में खड़ी है। वो हर वक्त गुस्से में चिल्लाने वाली बीटाउन कॉप नहीं है, वो सुनती है, ऑब्जर्व करती है, कैलकुलेट करती है और फिर डिसीजन लेती है। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल लेयर इज यूनिफॉर्म के पीछे का इंसान। केस का प्रेशर है, विक्टिम्स का ट्रॉमा है, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर घर लौटकर एक नॉर्मल वाइफ और माँ होने की कोशिश भी। इन शॉर्ट शेफाली शाह ने वर्तिका को सुपर हीरो बनाने के बजाय ह्यूमन रखा। नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट आईजी मीरा देशमुख प्लेड बाय तबू इन दृश्यम। सो ये एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनके सामने एक ऑर्डिनरी फैमिली ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग कर डाली। दृश्यम में अजय देवगन एज विजय सलगांवकर अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक इलैबोरेट स्टोरी तो क्रिएट करते हैं, लेकिन उनकी उस स्टोरी के सामने खड़ी है हमारी आईजी मीरा देशमुख, एक ऐसी पुलिस ऑफिसर जिसके लिए ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं उनका पर्सनल क्वेस्ट बन जाता है। वेल, मेरी इस लिस्ट में अभी और दो ऐसे ही फीमेल कॉप्स की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इन्होंने खाकी को सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं, एक पर्सनालिटी बना दी।
1: श्रुति, श्रुति, श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप और मैं बात कर रही हूँ हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ अल्टीमेट लेवल फीमेल कॉप्स की, जो कभी सिस्टम से लड़ती दिखी, कभी क्रिमिनल से, कभी एक इम्पॉसिबल केस से और कभी कभी खुद के इमोशन से। तो लिस्ट में सबसे पहले हमने बात की शिवानी शिवाजी रॉय प्लेड बाय रानी मुखर्जी के बारे में। नंबर दो पे वी टॉक्ड अबाउट डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी प्लेड बाय शिफाली शाह। नंबर तीन पे वी डिस्कस्ड अबाउट आईजी मीरा देशमुख प्लेड बाय तबू। और अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट एसपी आभा माथुर प्लेड बाय प्रियंका चोपड़ा इन द मूवी जय गंगा जल, जहां कहानी एक इंडिविजुअल क्रिमिनल से ज्यादा पूरे सिस्टम के खिलाफ है। प्रकाश झा की जय गंगा जल एक ऐसे पुलिस सिस्टम को एक्सप्लोर करती है जहां पावर, पॉलिटिक्स, करप्शन और क्राइम एक दूसरे से जुड़े हैं। और उसी बीच आभा माथुर एक ऐसी ऑफिसर हैं जो एक करप्ट सेटअप में एंटर करती हैं और डिसाइड करती हैं कि सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं, चैलेंज करना है। मूविंग ऑन नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट कस्तूरी डोगरा प्लेड बाय रवीना टंडन इन द क्राइम थ्रिलर अरण्यक। सो ये फिल्म एक एटमोस्फेरिक क्राइम थ्रिलर है जहां एक हिल टाउन में एक मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस और एक सपोजिटली मिथिकल क्रीचर की कहानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को एक स्ट्रेंज डायरेक्शन में ले जाती है। फिल्म में कस्तूरी का किरदार इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो पिक्चर परफेक्ट कॉप नहीं है। शी इज मेसी, कॉम्प्लिकेटेड एंड डेफिनेटली ह्यूमन। एक तरफ उसकी ड्यूटी है, दूसरी तरफ फैमिली और पर्सनल लाइफ। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर है, दूसरी तरफ अपने ही इमोशनल बैगेज का वेट। और शायद इसी वजह से कस्तूरी बाकी फीमेल कॉप से अलग लगती है। वेल, मेरी इस लिस्ट में आप भी कोई ऐसी ही फीमेल कॉप का नाम ऐड करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट। बट ये बात तो सच है यार दैट इट्स हाई टाइम कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से ऐसे मीटी फीमेल कॉप्स वाले रोल्स हमें और देखने को मिले। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ।